0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Le Vendredi fou est de retour chez Brick. Juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रुदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच पे हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
4: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: चल मेरे साथ ही चल ए मेरी जाने गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल। हम वहाँ जाएं जहाँ प्यार पे पहरे न लगे, दिल की दौलत पे जहाँ कोई लुटेरे न लगे। कब है बदला ये जमाना, तू जमाने को बदल चल। अपने मिलने पे जहाँ कोई उंगली न उठे, अपनी चाहत पे जहाँ कोई दुश्मन न हंसे। छेड़ दे प्यार से तू साज़े मोहब्बत ए गजल चल। चल मेरे साथ ही चल। वेल दिस केम फ्रॉम द ग्रेट राइटर नीदा फाजलीज़ पेन। वेरी प्योर, वेरी डीप, वेरी इंटेंस।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम तो मसरूफ थे अपनी तन्हाइयों में, मुद्दतों बाद इतने प्यार से किसी ने पुकारा है। एक पल ठहरे, रुककर सोचने लगे, इतना मीठा तो कभी अपना नाम न था, क्या सच में ये नाम हमारा है? ये सच है, रेगुलरली रूटीन में बस ऑर्डिनरी सा लगता है खुद का नाम, इनफैक्ट खुद का इंटायर वजूद ही। बट जब वो खास इंसान आपके नाम को प्यार से पुकारे तो अपना नाम भी खास लगने लगता है ना?

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। अगर कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसातें होंगी। जी हाँ, यकीनन बरसातें होती हैं, बट सिर्फ उन लोगों की याद में जो अपनी जिंदगी को एक अलग परिभाषा देकर जाते हैं। हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हम ये उम्मीद रखें कि हम ना होंगे तो कोई हमें याद करेगा, गलत एक्सपेक्टेशंस हैं।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Le Vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 utilisés pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में, कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं, उस खास इंसान के पास। पर होता यूं है कि कई बार हालात, कई बार जज्बात, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम, पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, मगर इस जुबान ने कहने ना दिया। कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम, तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ना हौसला ना इरादे बदल रहे हैं लोग थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग ना वफा ना किरदार ना उसूल कोई ना जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग वाकई में इन चंद लाइंस में सच्चाई है द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज सिनेरियो इज हिडन अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता क्योंकि मुखौटे जो लगाकर घूमते हैं हम लोग चले बातें तो बहुत सी होती रहेंगी एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक पहले

0: जरा महकता जिस्म भी तो तेरा।
1: जिंदगी को सही तरीके से जीना है, जो सलीका है सबका इंडिविजुअल होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि कभी गुजरे हुए वक्त को उलट कर देखो, आगे बढ़ना है तो पीछे पलट कर ना देखो। खूबसूरत सी नजर आती है ये दुनिया यूं तो, देखना है तो जरा नकाब उलट कर देखो। एंड फाइनली अपने वादों के अल्फाजों को ना भूलो कभी, और कहीं भूल जाने का अगर खौफ है तो उन्हें रट कर देखो।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: सुन दे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं, इस शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से ही की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अपने आप को जब तलाशना शुरू करते हैं तो खुद को ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं आईने के पास। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। अब तो ले देकर वही शख्स बचा है मुझको मुझसे जुदा करके जो छिपा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि कौन हूँ मैं, पर इस बात पे खामोश है कि क्या खास है मुझ में।